0: लाइका रेडियो।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
4: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
5: Leica Radio.
4: Raj Badden drives Leicester home with Drive at 4 p.m. Leica.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

पुरख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले थोर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच

0: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
3: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154।
4: जी टीवी HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
5: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
4: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
5: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
4: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
6: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
4: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
8: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
7: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
8: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
7: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
11: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
11: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at leicamedia.co.uk.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye. Happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
16: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
17: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
18: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
17: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
19: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
20: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
21: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
19: अरे कहाँ हो तुम?
21: हो आलो आलो। परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
11: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
22: You know how fans shout at football matches?
23: Oh, wake up!
22: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
15: Your wake-up call. This is Kajal on Breakfast.
24: Leica Radio.
25: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

ना के हाँ और सुनो हाँ एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे सुनो बात आगे सुनो तो अरे सुनो तो हाँ।

क्या करूं अब क्या करूं? कोई है? कोई है? कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम? हैं? जाग गई? और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Back-to-back hits across the Leica Radio Network.

सुना आपने? अभी ये गीत जो है ना फिल्म बॉम्बे से है, ये ध्यान से सुन लीजिए. Listen to it absolutely carefully. And these are sung by kids, by the way.

0: LikeaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LikeaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LikeaMedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: वेरी गुड मॉर्निंग. मौसम वाले कहते हैं कि भाई वैसे तो मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन बीच में एक आध बार जो है बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता. आमतौर पर दिन भर जो है वो शुष्क रहने की संभावनाएं ज्यादा हैं. हवाएं चलेंगी. मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 18 डिग्री सेल्सियस और मिडलैंड में 16 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica.

0: ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं भाई जो कहें कि मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा ही नहीं, नहीं तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो, मैं नहीं बोल रहा भाई, बिल्कुल नहीं बोल रहा। क्या आवाज, क्या दमदार आवाज थी, और खोज के लाए थे राज कपूर साहब फिल्म बॉबी के लिए इस आवाज को। भाई चंचल साहब से मेरी मुलाकात शिमला में हुई थी और बरसों पहले हुई थी, कितना पीछे जाएं। अरे साहब वो जमाना था जब शिमला के एक थिएटर में हम लोग प्ले करने के लिए गए हुए थे, कंपटीशन था और सुदर्शन गौड़ नाम के एक व्यक्ति ऑर्गेनाइज किया करते थे वहाँ। तो भाई हमारा तो वहाँ नाटक था और चंचल साहब का प्रोग्राम था म्यूजिक का कहीं, तो उनसे मुलाकात हुई, छोटा सा इंटरव्यू भी हो गया। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई आपका ये गीत बॉबी फिल्म वाला मैं नहीं बोलना, ये तो सुपरहिट गाना था, तो भाई वो नाराज हो गए, सुपरहिट कहते हैं आप इसे, सुपरहिट। मैं सोचने लगा कि क्या गलती हो गई भैया, तारीफ ही की है, बोले ये सुपरहिट नहीं, ये गीत मेगा हिट था, मेगा हिट कहिएगा इसको, क्या बात है। थैंक यू नरेंद्र चंचल साहब, भाई दुनिया में नहीं है लेकिन आवाज तो शाश्वत है, स्वर ईश्वर है, व्यापक है, हमेशा है, जब चाहेंगे सुन लेंगे। तो साहब एक गीत तो हमने बॉबी फिल्म का आपको ये नरेंद्र चंचल की आवाज में सुनवाया, और भाई इससे पहले जिससे प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, दैट वाज किशोर दा एंड आशा भोसले, फिल्म स्वर्ग से सुंदर 1986 की फिल्म थी। बैक टू बैक संगीत से प्रोग्राम शुरू होते हैं और उसके बाद भाई हम आगे बढ़ते हैं आपको पाउंड का रेट बताते हुए। यस, SBI की ओर से पाउंड का रेट भारतीय मुद्रा में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई अभी भी रेट अच्छा है, अगर पैसे अपनों को हिंदुस्तान में भिजवाना चाहें तो आज का इस समय का रेट नोट कीजिए, फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.75 रुपीज मैक्सिमम, अधिकतम 127.75 रुपए का रेट चल रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी है। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन £75 वाउचर एवरी डे। यस, ये चल रहा है और जून के आखिर तक चलेगा, और इतना ही नहीं, व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ये तो है £75 का वाउचर, पर 2000 या उससे ज्यादा भेजेंगे तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक कैन बी वॉन। TNC apply, yani terms and conditions lagu.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai. Chawal.

0: on Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
2: Okay, help's on its way.
3: Grab my hand!
4: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
5: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
0: Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire. With the UK's biggest Asian hits. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
7: दीवानावार कोई निशा ढूंढते रहे, हम तुझको यहां और वहां ढूंढते रहे, आंखों में नजर डाली न दिल में किया तलाश, मिलना कहा था तुझको और कहां ढूंढते रहे, घर बार अपना किस तरह उजड़ा खबर नहीं, हम तेरी गली तेरा मकान ढूंढते रहे, बाहर गया ही कब था तू मेरे वजूद से, जब तक हुआ ये राज आया हम तो ढूंढते ही रहे, तलाश करते रहे।
8: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: और लीजिए साहब, प्रोग्राम शुरू ही हुआ कि आधा घंटा गुजर भी गया, 10:30 बज गए, यानी खबरों का वक्त हो गया है। और खबरों में भाई, एक तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुश्किल लग रहा है क्या हिंदी में? ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और भाई इसमें एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं विश्व स्तर पर। अजरबैजान में एक मेन कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा भाई, आज के दिन के साथ जो खबरें जुड़ रही हैं, आइए उन पर जरा नजर डालते हैं। आज की खास खास खबरें, लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील होने की उम्मीद है, और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बांग्लादेश ने कहा है कि भारत की ओर से लोगों को जबरन भेजने की कई कोशिशों को नाकाम किया है उन्होंने। तमिलनाडु के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के बयान की चर्चा हो रही है, क्या है देखते हैं आगे चल के। और लोकसभा के फॉर्मर स्पीकर सुभाष कश्यप का निधन हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। आइए अब जरा विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। दुबई के शाही परिवार की फॉर्मर डॉटर इन लॉ हिरासत में है, क्या वजह है भाई? दुबई के शासक के भतीजे की फॉर्मर वाइफ जेनाब जवाद अली को अरेस्ट किया गया है। जवाद अली पहले एक इंटरनेशनल जिमनास्ट रह चुकी हैं। बताया गया है कि जेनाब जवाद अली को उनके फॉर्मर हस्बैंड शेख सईद बिन मखतूम बिन राशिद अल मखतूम की शिकायत के बाद हिरासत में लिया गया। शेख सईद बिन मखतूम उनके 3 बच्चों के पिता भी हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि कोर्ट की मंजूरी से मुलाकात के समय वो बच्चों को अगवा करके ले गई। मंगलवार की रात से ही जवाद अली के परिवार और दोस्तों का उनसे संपर्क टूट गया था और वे उनके ठिकाने को लेकर के चिंतित थे। भारत से आने वाली खबरों में मणिपुर के कांगपोकपी जिले में वायलेंस की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हमला आज शुक्रवार सुबह तड़के 4 बजे किया गया। हथियारों से लैस सस्पेक्ट्स उग्रवादियों ने लोईबोल खुलिन गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हमलावरों ने कुछ घरों को आग भी लगा दी। फिलहाल पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में अटैकर्स की तलाश में अभियान चला रही है। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इसके जरिए भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि वो पिछले 8 साल में एनटीए की ओर से ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशंस में पेपर लीक और जो अनियमितताओं का एक श्वेत पत्र जारी करें, यानी वही अनियमितताएं होती है, मतलब जो सही तरह से नियमों का पालन नहीं किया गया है। भारत सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई के इन्वेस्टमेंट पर लागू टैक्स नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट मिलने पर किसी भी ब्याज या कैपिटल गेन को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। बांग्लादेश ने कहा कि भारत की ओर से लोगों को जबरदस्ती भेजने की कई कोशिशों को उन्होंने नाकाम किया है। बांग्लादेश ने कल कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में भारत की ओर से लोगों को फोर्सली बांग्लादेश में भेजने की कई कोशिशें नाकाम की हैं। उसने सीमा के कई हिस्सों में भारतीय अधिकारियों की ओर से घुसपैठ की 10 कोशिशों का पता लगाया है। अब भारत भाई गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को वापस भेज रहा है, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि नहीं, वो घुसपैठ करवा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमाओं में से बॉर्डर में से एक है, जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली है और इसमें हर तरह की जमीन शामिल है। इससे इसकी निगरानी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेंगलुरु डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं मिलने पर कर्नाटक में कांग्रेस के नेता रामलिंगा रेड्डी ने डीके शिवकुमार की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। भाई ये डीके जो शिवकुमार है, ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने अपनी सरकार का गठन किया और इसमें एक मंत्री रामलिंगा रेड्डी, जो डिपार्टमेंट उन्हें मिला, जो पोर्टफोलियो उन्हें मिला, उससे वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। पर साथ ही कहा है कि वो पार्टी में बने रहेंगे और एमएलए बनकर के काम करते रहेंगे। इंटरनेशनल खबरों में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए एक नया प्रपोजल रखा है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में खुद और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आमने सामने की मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। अच्छी बात है, दोनों आमने सामने मिले, बातचीत करें सीधी डायरेक्ट। यूक्रेनी नेता ने लिखा कि जब तक यूरोप में चल रहा युद्ध एक बार फिर अमेरिका के ध्यान का केंद्र न बन जाए, सिर्फ इंतजार करना गलत होगा। उन्होंने कहा कि शांति केवल यूक्रेन और रूस के बीच सीधी बातचीत के जरिए ही आ सकती है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता अपने बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर उनके ताजा बयान को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है। पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, उन्होंने कहा कि आजकल के समय में इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, पानी हमारा जो आता है बीच में कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और इसके कारण कमी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा को राज्यसभा चुनावों के लिए कर्नाटक से अपना उम्मीदवार बनाया है। पवन खेड़ा भाई चर्चा में है असम के चीफ मिनिस्टर पर टिप्पणी को लेकर के, और कर्नाटक जैसे खूबसूरत राज्य से राज्यसभा के लिए उनका नॉमिनेट होना, वो कहते हैं कि मेरे लिए गर्व की बात है। और लोकसभा के फॉर्मर महासचिव सुभाष कश्यप का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल संविधान विशेषज्ञ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट सुभाष कश्यप की मृत्यु पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर सुभाष सी कश्यप के निधन से गहरा दुख हुआ है, जिन्होंने लोकसभा के महासचिव के रूप में काम किया। वे भारत के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों में से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स में से एक थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी आपस में अच्छी बनती है, खूब चलती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: Welcome friends to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
2: और साउथ ओल्ड ट्रेवल फिर याद दिला रहे हैं भाई, इन गर्मियों में ज़रूर कहीं सैर सपाटा करने के लिए निकलिए, क्योंकि साउथ ओल्ड ट्रेवल की सेवाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स और मोर विद हॉलीडेज डील्स विद दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से भी ज़्यादा का भरोसा इस्तेमाल कीजिए, आजमाइए। ट्रैवल अवार्ड भी उन्होंने जीता है, यस, विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड। साउथ ओल्ड ट्रैवल का टेलीफोन नंबर है 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
3: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
4: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
3: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
4: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
3: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
4: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
3: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre World Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click Rifco Theatre .com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods.
8: Radio partner Leica Radio.
9: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आइफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना, मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
11: Nun Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.

0: मैक्सिमम टेम्परेचर आज लंदन में 18 डिग्री और मिडलैंड्स में 16 डिग्री तक जा सकता है।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ब्रिटिश घड़ियों में सुबह के 11:04 हुए हैं और बहन भाइयों, मनोरंजन में ये समय चिंतन के लिए निश्चित है। दूर दूर बैठे हमारे श्रोता जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ भी, उनका स्वागत है। विशेषकर आज के चिंतन में जो हम आलेख शामिल कर रहे हैं, ये हमें भिजवाया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर भीम साहब ने। भीम जी लिखते हैं कि रवि जी, हम तो आपसे काफी आगे हैं समय के हिसाब से, लेकिन आपके यहाँ भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा होगा, लोगों को याद दिलाइए और जागरूक बनाइए। थैंक यू प्रोफेसर भीम जी। प्रोफेसर भीम प्रकृति के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं और कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज टू रिमाइंड पीपल कि हमारे कुछ कर्तव्य, हमारे कुछ फर्ज बनते हैं इस नेचर के प्रति, धरती के प्रति, जल, आकाश, वायु, इनके प्रति। तो साहब एक छोटे से प्रसंग से उन्होंने इशारा किया है। एक बुजुर्ग आदमी, बहुत बूढ़ा, अपने घर के आंगन में एक प्लांट लगा रहा था, एक दरख्त का छोटा सा पौधा आरोपित कर रहा था। तभी वहां खेलते बच्चों ने उन्हें देखा और उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, बाबा जब तक ये पौधा पेड़ बनेगा, इस पर फूल लगेंगे, फल लगेंगे, उन फलों को खाने के लिए आप तो दुनिया में नहीं रहेंगे, पक्की बात है। बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, हमने अपनी जिंदगी में जो फल खाए हैं बेटा, वो दरख्त के हमने लगाए थे, हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आप जैसे नौजवानों के लिए और आगे बच्चों के लिए ये दरख्त लगा रहा हूं, अपने लिए नहीं। बहन भाइयों, हमें दुनिया में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो फल फ्रूट सब्जियां मिनरल्स वनस्पतियां अनाज भाई जो कुछ भी मिल रहा है, डायरेक्टली हम तो नहीं उगाते और कुछ तो बहुत पहले के लगाए हुए हैं, हम उपभोग कर रहे हैं, तो हमें भी आने वाले समय के लिए कुछ करना चाहिए। प्रोफेसर भीम कहते हैं कि आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो आपको बता दें कि अजरबैजान के नगर शहर बाकू में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, दुनिया भर के देश में इकट्ठे हो रहे हैं इस बात पर विचार करने के लिए कि ये जो रोज रोज प्रकृति का प्रकोप हम सहते हैं, इससे कैसे निपटा जाए। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1972 में किए गए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य, इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति अवेकनिंग बढ़ाना, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव जगाना। भाई मदर नेचर चाहती है कि हम उसका सम्मान करें, उसके साथ खिलवाड़ ना करें, छेड़छाड़ ना करें। सुन लीजिए, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है, और इस धरती के प्रति कर्तव्य याद दिलाने के लिए आज

मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। प्रोफेसर भीम कहते हैं कि प्रकृति या ये धरती हमसे शिकायत नहीं करती, हमसे आर्ग्यू नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, लेकिन कभी कभी इशारा जरूर करती है। ये जो भारी भरकम गर्मी पड़ती है, या कभी कभी जो भूकंप आते हैं, या कभी जो समंदर में उफान उठते हैं, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि कुछ गलत हो रहा है प्रकृति के साथ। हमें प्रकृति को सम्मान देना है भाई। ये जो ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट चेंज, ये सब चेतावनी तो हैं, इनका इशारा समझ करके हमें पानी की रक्षा करनी है, पेड़ लगाने हैं। ये हरियाली जो खत्म होती जा रही है, जो सीमेंट के शहर खड़े होते जा रहे हैं, याद रखिए धरती कह रही है छुटपुट दुर्घटनाओं के माध्यम से कि हरी भरी ये धरा हमारी। नोट कर लीजिए, जीवन की है ये फुलवारी, नदियां पर्वत वन और उपवन, इनसे ही है जग का जीवन। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, मिलकर धरती को स्वर्ग बनाएं, स्वच्छ रहे पर्यावरण सारा, यही रहे संकल्प हमारा। नेचर का सम्मान करेंगे, हरियाली का मान करेंगे, आने वाली पीढ़ी बोले धन्य है वे जो वृक्षों को तोलें।

0: समझ में आ गया भैरव भाइयों, हम क्यों धरती को धरती माँ कहते हैं। माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। क्यों नदियों को माँ कहते हैं, प्रकृति को माँ कहते हैं। यही धरती भाई, आज विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर छोटी सी ये भेंट हमें आलेख भिजवाया सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर भीम देव जी ने। प्रोफेसर भीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज के चिंतन के लिए लोगों को जागरूक बनाना हमारा कर्तव्य बनता है रेडियो के माध्यम से, और भाई संचार माध्यमों के जरिए किसी भी तरह से इतनी जागरूकता कि हम प्रकृति के प्रति अपने सम्मान का भाव रखें। जो गीत हमने सुनवाया दैट वाज बाय महेंद्र कपूर एंड साथी, संगीतकार नौशाद साहब की रचना थी, फिल्म गंवार से लिया गया था ये गीत। और आज का चिंतन, आज का विचार, एक बार पुनर्धन्यवाद प्रोफेसर भीमदेव इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। चिंतन समेटते हुए याद दिला दें कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाने हैं भारत तो अवसर है, समय है और अच्छा रेट भी है। आज का रेट फॉर वन पाउंड इन योर पॉकेट कुड गेट यू अप टू 127.5 इंडियन रुपीस, 127.50 रुपए। और इसके अलावा सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, देन Another extra benefit, bhai. You could be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Radio.
4: Laika Radio. इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.
9: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा?
10: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडु का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पांडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
11: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio. We'll be right back.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा
1: वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।

0: महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा और साथियों की आवाजों में भैया कव्वाली नुमा गीत हमने आपको सुनवाया। संगीतबद्ध किया था संगीतकार रवि ने और भाई पसंद किया हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, उनमें एक हमारे एजाज भाई शामिल हैं, चैशम में सुन रहे हैं, एक एक गीत पर उनका रिएक्शन आता है। थैंक यू वेरी मच एजाज भाई, कीप लिसनिंग। अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी कव्वाली है, मैंने आज देर से सुनना शुरू किया। क्यों भाई अनिल जी, ये ठीक नहीं है, आप लेट आए हैं, मैं तो कहता हूँ कि बेंच पे खड़े हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, देर आए दुरुस्त आए, सुनते रहिएगा कव्वाली आपके नाम की, क्योंकि आप कव्वालियों के बड़े रसिक हैं। और इसके अलावा भाई ललित छत्रिशा, आपका संदेश मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। पम्मी सलाव में खबरों के रसिक देखिए, और नीलम हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू नीलम जी। महेंद्र बजारिया हैरो में, और अर्जुन जी थैंक यू। भरत गंगाराम भाई, साइकिलिंग करते हुए आपकी तस्वीर बड़ी अच्छी लग रही है। सत्यनारायण सैनी हमें भारत में सुन रहे हैं, धन्यवाद उनका। राजीव पटेल कहते हैं द चिंतनवाज एनवायरमेंटल भाई, आज पर्यावरण की प्रति जानकारी बढ़ाने की खातिर आपने चिंतन सुनाया। आपको पता है हमारा मिल्टन कीन्स कितना हरा भरा है, बहुत खूबसूरत है साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। निर्मला जी आपका संदेश मिला है, थैंक यू, चिंतन अच्छा लगा आपको। और आप कौन हैं, अरे आप तो वही हैं कंचन अग्निहोत्री, थैंक यू कंचन जी। महेंद्र पटेल क्रोइडन में सुन रहे हैं, फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में सुन रहे हैं, और हिना जी आप कहाँ सुन रही हैं, थैंक यू जहाँ भी सुन रही हैं। प्रतिभा जी कहती हैं कि आज मेरा छोटा भाई ना दिल्ली में वृक्षारोपण कर रहा है, वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगा रहा है भाई, बधाई दीजिएगा हमारी ओर से, शुभकामनाएं उन्हें। देशराज बेसन साहब कह रहे हैं कि आपके लिए कविता भेज रहा हूं, कांपते हाथों से रिश्तों को वक्त को थामा ना गया, जिंदगी का हर दौर नजरों के सामने से गुजर गया, किससे कहूं सुनेगा कौन मेरी लड़खड़ाती जुबान की बात, सब सोचते हैं ये बूढ़ा फुसफुसा कर न जाने क्या कह गया, झुक गए जब कांधे जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते, सहारा मांगा मैंने तो कोई मेरे हाथों में लाठी थमा गया, मेरे घर आंगन की फुलवारियां सभी सूखी और उजाड़ हो गई, सभी सूखी और उजाड़ हो गई, तितली कोयल के बेघर होने का इल्जाम भी मेरे सर गया, वाह। बड़े शोक से तामीर किया था मैंने अपने सपनों का महल, अरसा हुआ घर के इस कोने को छोड़ कहीं आया ना गया, क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद बैसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द पोएट्री। जस्मीन शुक्रिया, मानसी धन्यवाद। और आप कौन है साहब, नाम लिखा करें प्लीज, ढूंढ लिया, किरण है आपका नाम, थैंक यू वेरी मच किरण जी, सो नाइस ऑफ यू। जगदीश जी बुशी में, उल्लास टोरंटो में हमारा साथ निभा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हेतल सोलंकी आपका भी धन्यवाद। और आप निक कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, है ना, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए, सुनने के लिए और ये बताने के लिए कि हम सुन रहे हैं।
1: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Tu hai to duniya kitni hansi hai, aur jo tu nahi, to kuch bhi nahi hai. Tu ho to badh jati hai keemat mausam ki, aur ye jo teri aankhein hain shola shabnam si, bas inhi mein jeena hai, inhi mein marna.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बता दें आपको भाई लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड आ गया है पॉडकास्ट का, एपिसोड 19, लिव इन रिलेशनशिप्स चर्चित हैं भाई और रेडियो वाली ने होस्ट किया है। बहुत सारे सवाल उठे हैं और जानने की कोशिश की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी एशियन कम्युनिटी में कैसे देखी जाती है। ये भाई साथ साथ रहे शादी से पहले, ये एक ट्रायल पीरियड समझा जाता है, और क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मापदंड स्थापित किए गए हैं। भाई महिला अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो कुछ और सोचते हैं लोग, और पुरुष अगर रहती है तो, लड़का अगर रहता है तो चलता है आजकल। क्या सोचती हैं आप? लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, देखना मत भूलिएगा।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
4: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep, 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Leica Radio.
8: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
11: Be part of a historic grand opening.
12: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
11: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
12: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, डायल 999।
14: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
0: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव।
3: वेरी गुड मॉर्निंग, लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन। और भाई क्रिकेट में अगर आपकी दिलचस्पी है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है लॉर्ड्स में। आज खेल का दूसरा दिन है, बड़ा लो स्कोरिंग मैच चल रहा है भाई। पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम 140 रन पर सिमट गई, लेकिन न्यूजीलैंड भी जवाब देने में बहुत पीछे रह गए भाई। 108 रन बनाए हैं और 9 विकेट चटकाए हैं इंग्लैंड वालों ने उनके, गजब है।

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से स्कोर एक बार फिर बता दो भाई आपको कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये पहला टेस्ट मैच कल शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 140 रन पर सिमट गई पहली इनिंग में। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई। इस समय उनका स्कोर है 108 रन और 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। स्कोर से हम जोड़े रखेंगे आपको, आप जुड़े रहिएगा रायका रेडियो नेटवर्क के साथ। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वालों को यह भी बता दें भाई, विमेन वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं और हम उससे भी आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच भी तो शुरू हो रहा है।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एंजॉय द म्यूजिक। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: If you're tired of constantly changing glasses, you must try this.
3: Customers, but no digital
4: Throw away
3: strategy.
4: Your outdated
3: your
4: reading glasses and expensive progressive lenses.
3: Don't risk it.
4: One pair of glasses can meet
3: Hardy
4: all your
3: Hanks.
4: Needs.
3: Don't disappear. Dominate.
5: Your body is like
3: Visit
5: sandalwood.
3: Hanks.
5: Your heart is restless.
6: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
7: और बहन भाइयों, इस सप्ताह के कलाकार का नाम है श्यामलाल बाबू राय. भाई कोई नहीं पहचानता इस नाम से, पर असल नाम यही था. गीतकार इंदिवर हैं इस सप्ताह के आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जिनकी कलम ने ऐसे ऐसे गीत लिखे भाई, ऐसे ऐसे गीत जो हैं फिल्मी दुनिया को दिए कि आज भी लोग गुनगुनाते हैं और इंदिवर साहब उन गीतों के साथ याद आते हैं.
6: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
7: इंदिवर की कलम से जन्मा ये गीत उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ में.

गीत, गजल, शब्द, भजन, कव्वाली भी अच्छी लगती है। गीत, गजल, शब्द, भजन, कव्वाली भी अच्छी लगती है। सुर में जब कोई देता है तो गाली भी अच्छी लगती है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई ये भी आपको याद दिलाता चलूं कि आतिफ असलम रिटर्न्स टू द यूके फॉर अ स्पेशल वन ऑफ कॉन्सर्ट एट द O2 लंदन ऑन संडे द 14th ऑफ जून. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम AXS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ऑफ कोर्स. और भाई रागासन नाम तो सुना होगा, बड़ा प्रतिष्ठित नाम है. लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स at LaikaRadio.com.
3: ये है
4: Laika Radio.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
5: Good night.
6: Achha, good night.
2: अभी रात हुई नहीं है. कैसे नहीं हुई है? ऑस्ट्रेलिया में रात चल रही है.

0: जगाओ इनको भाई, अभी प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के बीच में नहीं सोना। साउथ ओल्ड ट्रेवल का संदेश सुन लीजिए, नींद उड़ जाएगी क्योंकि भाई इतनी अच्छी ऑफर वो दे रहे हैं। मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ओल्ड ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit South Old Travel or call 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટર માં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 2:30 વાગે અને સાંજે 7 વાગે। ટિકિટ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655, મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk। સકના રહેજો હસબન્ડ જી।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ ओल्ड ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ ओल्ड ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ ओल्ड ट्रेवल,
7: फोन 0208574-8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा।
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
11: ये है लाइका गोल्ड।

0: Listen to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
6: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
7: इफ्तदाई आशिकी का है फसाना मुख्तसर, टूट कर इस दिल का उस चेहरे पे आना मुख्तसर। अपने घर से उस गली तक गाहे रास्ता याद है, अपने घर से उस गली तक गाहे रास्ता याद है। हाय कितना हो गया है ये जमाना मुख्तसर, एक एक कदम पर एक एक पैड़ याद आएगा।

0: बस इतना याद है, इससे आगे कुछ याद नहीं है। और मुझे याद है भाई, ये फिल्म मैंने हिसार में देखी थी, हरियाणा के शहर हिसार में है, महबूब की मेहंदी। हिसार में हमारे शो चलते थे, एक था टीटीसी ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ हमारे प्रोग्राम्स होते थे। और भाई शो में बिजी रहने के बाद थोड़ी बहुत जो फुर्सत मिलती थी उसमें फिर कोई फिल्म देखते थे। महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत आपने सुना।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी जरूर होगी भाई। कल टॉस जीत करके न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड वालों को न्योता दिया बैटिंग के लिए और सारी टीम को 140 रन पर समेट दिया, निपटा दिया। लेकिन हमें लगता था बड़ा लो स्कोरिंग मैच है, इनिंग रही है इंग्लैंड की, पर न्यूजीलैंड की उससे भी खराब। सारी की सारी टीम जो है इनकी भी निपट गई और इस समय इंग्लैंड खेल रहा है 24 रन विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 51 रन की लीड उनको हासिल है। न्यूजीलैंड की टीम जो है भाई समझिए पिछड़ी हुई है 51 रन से दूसरी इनिंग में। तो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा स्कोर से तो हम आपको जोड़े रखेंगे। और कमाल है कि इस मैच में बहुत आगे नहीं बढ़ पाई है दोनों टीमें, बहुत लो स्कोरिंग टेस्ट मैच है ये, कोई T20 या वन डे इंटरनेशनल नहीं है। पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस, रिजल्ट जरूर निकलेगा इसका।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और रेट्स में बता देता हूँ भाई, लेमफाई की एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.05 रुपीस, पाकिस्तानी 375.01, श्रीलंकन 453.05 रुपीस एंड बांग्लादेशी टकाज 165.38।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: और सर्राफा बाजार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लेट मी टेल यू द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 106.61 पाउंड्स पर
3: ग्राम। ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइंस एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116-266-4278।
4: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange. Chawal

0: लोगों का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
1: लिसन व्हेरेवर यू आर बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप नाउ Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 AM and drive back with Raj Badden weekdays at 4 PM. Leica Radio. This is Leica Gold across Greater London.
2: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya dunia ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
3: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
4: अबे यार, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ?
5: जा तुम.
4: ये फैसला मेरा था. भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
5: अगर हम साथ हैं,
4: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
6: खुशियों को लगी वक्त की नजर. कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
7: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392 एंड टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
8: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. This is Leica Radio across the Midlands.

0: Croatia Free Rice Tasting at S&D Supermarket, 169 to 171, Soho Road, Birmingham, B21 9SU. Come along this weekend from 10 a.m. to 5 p.m. and enjoy free veg dum biryani tasting, plus a special in-store offers on Disha Rice and more.
1: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: Leicester Mela is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
6: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
5: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
6: दिल तो टूट पे किया,
5: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
7: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
5: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
3: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks, outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
6: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
7: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.

आज के विनर ऑफ क्रेजी फॉर किशोर कॉम्पिटिशन हैपन्स टू बी विजय गुनोवा. विजय गुनोवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड गो एंड एंजॉय द शो. एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय टिकट्स वेन यू टेक योर लव्ड वंस, ऑफ कोर्स यू एंड वन अदर पर्सन विल गो टू द शो, बट इफ यू वॉन्ट टेक रेस्ट ऑफ द फैमिली, यू नो वेयर टू गेट द टिकट्स फ्रॉम, और जस्ट आस्क मी, आई विल लेट यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सॉन्ग.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में. ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
3: जगदात्री,
2: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
3: माला ले आना, लाया जी.
2: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
4: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन.
2: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
5: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
6: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
7: Hello, this is Annika from The Weekend Musty Show. Make sure you catch me between 1 and 4 every Saturday and Sunday across London and the Midlands.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.